सेवक से कस वह करतारा मोर अच्छा निज कर दे करे सब बैरन को आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आस्था तोर भजन की ही रहे प्यासा तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे भरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हू जो सदा हमारे पछा सरिया तुरजू करे हो रक्षा राख ले हो मुझ रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिव जीव अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल योगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताही हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जश्न उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब दे अपारा जब या करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हो जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी भूजो चारे।

महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कह कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आ

युग्म है। सो कहियत है सूरा आत्म जिणय सकल वसता कै जाका सदगुर पूरा।

0: 原子上那个庙里原子上那个庙里
1: धन गुरु रामदास महाराज पास जिन्हों का पहला नाम भाई जेठा से सतगुरु के सिर के उत्ते घुंगणियां जड़िया चुकिया हुई सन ते आवाजा मार मार के कहना से घुंगणियां बड़िया चंगिया हन ते छक लो इन्हों ले जाओ आवाजा कहते भाई जेठा जी जेड़ा छोटा हुंदा यतीम हो गया ते नानी सी जेड़े ओ लेके पिंड बसर के चले गए इत्थे आ गई है ते खत्री दी दुकान जेड़ी हुंदी आ सब ना छोटे ओ घुंगणियां दी हुंदी है। वेखो भाई जेठा जी फिर चले गए गोइंदवाल साहब उत्थे जाके कहते वेले समय दे विच सिर ते घुंगणियां नानी घुंगणियां बना ले ते सतगुरु कहंदे भाई जेठा जी आवाजा मार मार के ते कोई ता भाई जेठा जी दियां घुंगणियां कहंदा नून है नहीं गा कोई कहंदा इमली है नहीं कोई कहंदा मिर्च घट है आवाजा मारदा ते ए आवाज से जेड़ी गुरु अमरदास महाराज पातशाह नूं सुन गई आवाज है जेड़ी असी भी आवाजा देिए शायद वाहिगुरु करिए शायद साडी आवाज भी सतगुरु सुन लैणगे आवाजा दिंदे ते ए आवाज सी जेड़े धन गुरु अमरदास महाराज पातशाह नूं सुन गई आवाज दे आवाज है जेड़ी अज अमृत संचार होया आवाजा जड़िया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने जदों अमृत संचार किए 1699 ईस्वी हिजरी सन 1128 से सम 1756 से नानक शाही सम 230 से महाराज ने अमृत संचार किया। पांच आवाजा मारिया सतगुरु ने पांच प्यारे सतगुरु दे कोल आए हन आवाजा जड़िया हाले भी बंद नहीं हुई आवाजा जड़िया हाले भी कथक श्री केसगढ़ साहब तो गुरु पातशाह दी आवाजा आ रही हैं पर आवाजा सुननिया भागा वाले जिन्हां नूं आवाज सुनी अज अमृत छक के वो गुरु वाले बन गए तुहानू आवाज सुनी है सब संगतां नूं माए पाए बीबियां भैणां तियां वीरां नूं बच्चां सब नूं आवाज सुनी सतगुरु दे ते गुरु के दरबार विच हाजरियां भरन वास्ते संगतां पहुंचियां हन पर उन्हां आवाजां में सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आवाजां दे रहे हन भाई महाराज आख रहे हन सिखा मैं तेरे उत्तों दे अपने बिरध माता पिता जिहड़े ओह कुरबान कर दिते मैं तेरे उत्तों दे अपने छोटे छोटे बच्चे सी जिहड़े ओह भी कुरबान कर दिते तेरे उत्तों दे कुरबान करते पर तू ये आवाजा जड़िया सुन लिया महाराज कह

0: हरिया नहीं पर थोड़िया दे करे हरिया नहीं हो।
1: भाई जेठारी कह लगे कि जदों मेरे माता पिता मेरे सिर दे उत्ते ना रहे पिता अरदास पिता जी अकाल चलाना कर गए ओदी अंतम रस्म जिहड़ी अदा होई ते तुहाडे विचों कोई अंतम अरदास दे उत्ते आया सी उदों मैथों डर लगदा सी तुहानूं कि जे असीं चले गए इह जिहड़ा बच्चा है ते इहदे नानी साडे गल ना पा जावे वी तुसीं

हृदय जपनी जपो गुण तासा हरि अगम अगोचर अपरंपर स्वामी जन पग लग त्यावो हुए दासन दासा रहाउ सोमवार सच रहे आसमाई तिसकी कीमत कही न जाए आख आख रही सब लिवलाए जित देवै तिस पल्लै पाए अगम अगोचर लख्या न जाए गुर कै शब्द हर रहे आसमाए मंगल माया मोह उपाया आपे सिर सिर तंदै लाया आप बजाए सोई बूझै गुर कै शब्द दर कर सूझै प्रेम भगत करे लिवलाए हौ मैं ममता शब्द जलाए बुधवार आपे बुध सार गुरमुख करनी शब्द विचार नाम रते मन निर्मल होए।

सो जन बूझै हमें मारे तां दर सूझै एक सते सब दूजा हुआ एको वरतै अवर ना बिया दूजे तेजे एको जाने गुर कै शब्द हर दर निशाने।

साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई, तिसते ऊपर नाही कोए। कौन डरे डर किसका होए, गुरमति शांत वसै शरीर, शब्द चीन फिर लगे ना पीर, आवे ना जाए ना दुख पाए, नामे राते सहज समाए, नानक गुरमुख वेख हदूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर, एक सेवक एक भरम पलाय, आपे करे हरे आप कराए, एक

सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए कितनी वार सब आवह जाए गुर शब्द निश्चल सदा सच समाए कितनी वार ता जहां सच राते बिन नावे सब भरम है काचे मन मुख मरह मर बेगति जाहे एक ना चेत है दूजा लुभाहे अचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द क्यों पाए पार आप उपाए उपावन हार आपे की तोन गुर विचार बहुते भेख करह भेख धारी पाव पाव भ्रम है काची सारी ऐथ सुख न आगे होए मन मुख मुए अपना जन्म खोए सतगुर सेवे परम चकाई घर ही अंदर सच महल

मुकद गुआर नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए इकत नाम सदा रहया सुमाए। बलावल महला पहला शंत दखनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंदन वे लड़िया गोयल आई राम मटकी डार धरी हर लिवलाई राम। लिवलाए हर स्यों रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन वेल सुंदर देख पिर साधारिया। सच निवेलड़िए जोबन बाली राम आओ ना जाओ कहीं अपने सह नाली राम। ना अपने संग दासी मैं भगत हर की भावे अगाध बोध अकथ कथिय सहज प्रभ गुण गावे। राम नाम रस

भंजनो जोत सबाएड़िए त्रि भवन सारे राम घट घट रव रहिया अलख अपारी राम अलख अपार अपार साचा आप मार मलाई है हम मैं ममता लोभ जल हो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाने तार तार नहारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उरतारिया बलावल महला पहला मैं मन चाऊ घना साच बगासी राम मोही प्रेम परे प्रभ अवनासी राम अवगतो हर नाथ नाथ है तिसे भावे सो थी है कृपाल सदा दयाल दाता जिया अंदर तू जिये मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहे एक भवनी हाथ ना जाना नानका सच गह रहे पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम निज कर सूतड़िए फिरम जगाए राम नवहान नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपट सुभाओ दूजा चाकरी लोकानिया मैं नाम हर का हार कंठे साच शब्द निशानिया कर जोड़ नानक साच मांगे नदर कर तुद पाणिया जाग सलो नड़िए बोले गुरबाणी राम जिन सुन मन्याड़ी अकथ कहानी राम अकथ कहानी पद निर्वाणी वो विरला गुरमुख बूजे ओ शब्द समाए आप गुआए त्रे पवन सोजी सूजे रह अतीत परंपर राता साच मन गुण सारिया ओह पूर रहिया सर्ब ठाई नानका उरतारिया महल बुलाएड़िए भगत स्नेही राम गुरमत मन रहसी।

गुर तुठे हर प्रभ पाया, रंग रलिया माना राम, वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है,

मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन तन रंग पीना राम भगत वछल हर

सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ की नाराम बलावल महला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड

पाया पूरे वड भागे राम। हर प्रभ हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिवलाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगट आई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ भाई राम। अखी प्रेम कसाईया जो बिलक मसाई राम। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। जन नानक नाम बिगसिया हर हर लिवलाई राम। हम मूर्ख मुगद मलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु साबास है जिन हों मैं मारी राम। जिन वड भागियां वड भाग है हर हर पुर तारी।

मिल संत आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत ज्योति पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करन कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा।

आहा रिद्ध सिद्ध सुधारा सियमृत भगत भरी पंडहारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखी सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लजाई है चरण राज मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदूत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक।

सखी अति तिरका मंगल गाव है तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो।

कियो सुख सागर प्रभ भेटे है नानक सुखी होत एहो जीव संत सुख सागर प्रभ पाई है जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पुचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत भाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचर है बल गईये दुहचारन रसना राम प्रभ भगत बछल नह से।

नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोली है हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल मोहल्ला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाई है।

की जप अनंत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाह पकड़ तम ते काढ़िया।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इष्ट पुजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ देखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल है

हरि उत्तम हर प्रभ गाविया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिए जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइए मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारिय चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद पाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाइय आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख

अखंड भगत ना होवे, पार ब्रह्म ना पाया जाए, मन हठ कर्म कमावणी हाय ना कोई पाए। नानक गुरमुख आप बिचारी है, बिचो आप गवाए। आपे आप पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म बसिया मन आए। जम्मण मरना कटिया, ज्योति ज्योत मलाई। महला तीजा, बलावल करे हो तुम प्यारे हो, एक सस्यों लिबलाई। जन्म मरण दुख कटिया, सच्चे रह समाई। सदा बलावल आनंद है, जे चल है सतगुर पाई। सत संगति बह भाऊ कर,

एसी तुखारी राग जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह के अंदर तुखारी राग विच गुरु अर्जन पातशाह जी भी बाणी है अते साहिब गुरु नानक पातशाह जी की भी बाणी हजूर ने फरमान की है, आप जी ने श्रवण किया है।

गगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उदरे प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ओम जाप जी साहिब, एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद जाप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच सोचै सोच न हो वईंदे सोची लख वार चुपै चुप न हो वईंदे लाए रहां लिवतार भुखिया भुख न उतरी जिवन्ना प्रियां पार सहस सियाण पाला कहो है तायक न चलै नाल किव सुचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक न हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म जे बुझै ता हुम्मै कहे न कोई गावै को दान होवै किसै दान गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वड्याइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जप दिसै दूर गावै को वेखै हाजरा दूर कथना कथी न आवै चोट गथ गथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लैंदे थक पाहे जुगां जुगां तरखाही खाहे हुक्म हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहेब साच राय पाख्या भाव अपार आखे मंगै दे दात करे दातार फेर के अगर रखिया जत दिसै दरबार मोह के बोलन बोली है जत सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाऊ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक ए वै जानिया सब आपे सच्यार थाप्या न जाए किता न आवे आपे आप निरंजन सोए जन सेव्या तन पाया मान नानक गावी है गुणी निधान गावी है सुनिया मन रखी है पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रया सुमाई गुरीश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना अख नाही गहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा बिन भाणे के नाय करी जे तीसर ठो पाई वेखा बिन करमा के मिलै लई मत विजरत निवाहर माणिक जे एक पुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर सोनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कहे जस कीरत जग ले जे तिस नजर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे देहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनया सद पीर सरनाथ सुनया धरत दबले आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोह न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मानंद सुनया मुख साला हनुमंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र समृत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया सत्संग दो ज्ञान सुनया अठठ का इशनान सुनया पड़ पड़ पावे मान सुनया लागे सही ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश।

प्रपन्न है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलीम है कि परमं भीम है कि अगलो लाम है कि साहब कलाम है कि हुसन वजू है तो मामल रजू है हमेशल सलाम है सलीक तुम उदाम है कि नीमल सकाश है गरीबल परस्त है बुलंदल मकान है जमीन वाल जमान है तमीजल तमाम है रुजू वाल निदान है हरी फुल अजीम है रजा कि जी गिरना है नेकुल तरंग है पेद है पांग है अजीजल नवाज है नीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रमुक्त बभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है पेदी अनूप है समासो विराज है सदा सर्वसाज है समासल सलाम है सदैव काम है निर्वाद स्वरूप है गाद अनूप है ओंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे तरबर्गं तरबादेशो अगंजे अगाधेशुभं सर्वभागेशु सर्वानुरागे तरपोक्त स्वरूप है सज है शूद है गणर्कं प्रणास है प्रतिवल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपोक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपोक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है जाचरी शंब अपंग है अनंग है पेख लेख है परम कर्म है नाद है जुगाद है अजय है भय भूत है तूत है नाश है उदास है दंद है बंद है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है नचयंत है स्नंत है लेख है देख है लेख है पेख है टा है गाय है संभ है गम है नीला नाद है नत स्नत जात है जाद है चरपट छंद दस प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसाबल शांत तव प्रसाद नमो नरक नाशे सदैवंग प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं भूते परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे नरपंगी स्वरूप सर्वंगी अनोपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं सलीका मितवमेक सदैव प्रवाह अजय अजाय भगवती शांत दव प्रसाद के जा हजूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समाज तुल कलाम है कि साहब दिमाग है कि उसल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देंद है कि राज कर करीमल कमाल है कि वो समझवाल है गनीमल खराज है गरीबल रिवाज है हरीफल सिकन है रासल पकान है कलंक प्रणास है समाजतुल निवास है गंजल गनीम है रजाय करीम है समाजतुल जवाह है कि साहब किराए गनरकंग प्रणास है बैसतुल निवास है के सर्वल गवान है मेसल रवान है तमामुल तमीज है समाजतुल अजीज है परंग परमीश है समाजतुल अधीश है देसल लेख है मेसल बेख है।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

मन मेरे तुम की ओट ले। ओ माय सोल सीक द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु हैव नोन द ट्रू लॉर्ड, सरेंडर योर हार्ट बॉडी एंड सोल टू देम। द मैन हु रिकॉग्नाइजेस हिज लॉर्ड, दैट मैन इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स।

अवर से आनप सजली छाद इस चिन की तू सेवा लाग लीव ऑल अदर क्लेवरनेस एंड अटैच योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सच ए पर्सन.

गुरकीमत तुले यानी भगत बिना बहु डूबे सियाने। दिस इज द नेक्स्ट शब्द फ्रॉम सुखमणि साहिब। इट टीचेस अस टू फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन शोन बाय द गुरुज।

भाई गुरदास साहब जी ने अपनी पौड़ी अंदर लिखी है, चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दसों पिता ने इस पौड़ी का हवाला देते हुए अपनी बाणी अंदर बचित्र नाटक विच बड़ा सुंदर करके लिखे है कि ये सोडी अंत कितों चली ते किवें संसार से आई ते वारो वारी रूप किस तरह धारण कीते ने। भाई साहिब दास साहिब की पौड़ी अंदर लिख रहे ने।

0: केवोदीरंग गिली तरसी देवसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

Guru Patriya. It bound with the Kamatandal. Sanu Kaljubi Jivan Upadesh Sindhi Hui. E Gal Samajare Neke He Manuk. Data Ik Hai, Data Anik Hai. Deen Wala Ik Hai, Mangan Wale Boteri Hai. ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही दात मंगदा होवे, नहीं हर किसी भी मांग वक्री है, पर वो एक दाता सब दी चोली दात पा रहे हैं, एक गल वक्री है, किसी नु जल्दी किसी नु देर ना, पर दात सब नु मिलती है, ये नहीं कोई कह सकता कि दात मिन्नू नहीं मिली, हर कोई दात प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि साढ़े गुरु ने सानू इको गल समझाई है कि दात लैण तो पहले एक काम कर गुरा एक दे बुझाई एक गल दसी है सबना जिया का एक दाता सारे जीवां दा दाता इको ही है बस शर्त की है सो मैं विसरना जाए बस उन्हू विस्तारना उन्हू भुलना उन्हू हमेशा याद रख दात जिहड़ी मंगेगा वो मिल जाएगी।

दाता एक है, दाता अनेक है। दाता और दाता में बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना, तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदे दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़ती, जुड़ गए दाता दे नाल। साहिब कहिंदे दात हर तेनू मिलेगी, पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे किस दे, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच नहीं, जो भावे दे देवे। भाई साहब जी का एक बचन बड़ा कीमती है, आपकी झोली पावा, क्योंकि सतगुर बाणी विच कहिंदे ने सब दाता ही मालिक।

मन क्यों डोलदा? मन दे डोलन दा कारण की है? क्योंकि मन दा कोई आसरा नहीं, मन दा कोई सहारा नहीं। सहज उपदेश देंदे ये गल समझ आ रहे ने, सतगुर संग ना ही मन डोल। जे मन नूं ये यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन नहीं डोल। फिर मन नूं एक दलासा है, मन नूं एक भरोसा है कि गुरु मेरे नाल है। पढ़ते तो आपां जरूर हाँ, गुरु मेरे संग सदा है नाल, पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। जे भरोसा हो जाए तो वाकई मन डोलदा नहीं। पर सतगुरु ने ख्याल दिता है कि मन के डोलन के कुछ कारण हैं, कि मन क्यों डोल जाता है। चार कारण कुछ सियाणियां ने गिण के दसे। इस मन नूं डर है चार प्रकार, जिस कारण ये मन डोल जाता है। वो केड़ा है? पहला सरकार दा, ते दूसरा है समाज दा, तीसरा है रोजी दा, चौथा है मौत दा। ये चार प्रकार दा डर मनिया गया। हुण जे इन्हां तों बढ़ जाए मन नूं ये निश्चा यकीन हो जाए कि गुरु मेरे नाल है, फिर मन डोलदा नहीं। इन्हां चारां दी गल सतगुरु ने बाणी विच कही है कि सरकार का डर कैसा है, जे मन नूं यकीन होवे। सच्चे दी सरकार जुग जुग जानी है। इस मन अंदर कोई डर होवे ते केवल सच्चे वाहिगुरु दा हो, किसे होर दी लोड़ नहीं। क्यों? सच्चे दी सरकार जो जुगो जुगंतर तो चली आ रही है, इको जी है, उहदे विच कोई डर नहीं। दूसरी गल समाज दी, समाज तो मनुख बड़ा डरता है। समाज की आखेगा? बाणी दा फैसला, कोई पहला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है कार। कोई चंगा कवे कोई माड़ा कवे, हे मालिक मैं ते अपना आप तेरे अर्पण कर दिते। क्योंकि संसार अंदर ऐसा ही हुंदा है, चंगे काम दी कदी शोभा नहीं होई। कोई गुरु कारी आन लग पवे ते बहुते लोग विच एहो जे हुंदे ने, वेखो जी रोज गुरुद्वारे जांदे, ये ते भगत बन गए। वो भाई भगत ही बने हैं, गुरु कारी ही जांदा है ना, चंगा काम है। इसलिए कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, मैं अपना आप तेरे अर्पण कर दिता है। फिर अगली गल रोजी दी, ते रोजी मालिक ने सब नू देनी। रोजी तो कोई भी रोक नहीं सकता, जो मस्तक विच परमात्मा ने लिख दी है ना, वो ते मिलनी। ख्याल करो,

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

ऐसे जीने, ऐसे जीवन सदगुरु ने सृगाकार करके ऐसे जेड़ा जीवन नाम तो विसूना है, जेड़ा जीवन नाम तो बिना है।

किसी ने हरि में विचार दिया उखवार ही होगी शायद कहीं, क्योंकि नाम तो बिना तो सुख है ही नहीं। जे सुख चाहे ते नाम जाप सिमरन कर, सिमरन तो बिना सुख नहीं मिल सकता। साहब कहते हैं हर बिस्तर

0: के क्यों डिठो घड़ियाल एन दोष हमारी है हम दोषा दा क्या हाल।
1: अरे बेटा पंक्ति करने गए वापस आए कि वेख देने बहुत बड़ा सारा एक दरवाजा जिस दरवाजे अंदर एक कड़ियाल टंगी। कड़ियाल नू वेख रहे सन एक संतरी आया हाथ विच लकड़ दा हथौड़ा फड़े। उस हथौड़े दे नाल इस कड़ियाल ते चोटा मारनिया शुरू की थी। जब कड़ियाल नू चोटा वजिया फरीद साहब ने अपने मन में संबोधन किया कि सानू कल भी उपदेश जीवा नू उपदेश दे रहे हैं। कहिंदे ने फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल एन दोषा मारिए हम दोषा दा क्या। ए परी ए न दोषा इसने कोई दोष भी नहीं किया न दोषा ही मारिया जा रहा असी तो दोषी हाँ साढ़े दोषा का की हाल होगा। असी कितना वड्डा दोष कर रहे हैं मनुखी जाना भी कारण की संसार से आए भी लेकिन बखूने जा रहे हैं किस तो नाम तो बिना। फरी साहब बड़ा सुंदर ख्याल देंगे।

वरी नहीं, दो वरी नहीं, बार बार सवेर तो लैके शाम तक, रात तो लैके सुबह मतवेरी तक, कहते ने इस चोटा ही वज रही ने।

0: फरीद ए छोटा कड़ियालू नहीं बह रही, जे तू ही नहीं नाम जपेगा तेन भी इस तरह ही चोटा पैनी।
1: सिमरन भजन दया नहीं पीनी,
0: संसार ते आए किस लिए, नाम जपन लई सिमरन करन लई, लेकिन कर की रहे हैं।

0: मंगे
1: धर्मराय ने लेखता मंगना है शायद कह दे
0: नानक जी उपाय कै लिखना वे धर्म बहालिया उठे सच्चे ही सच निबड़े तुन वक्त कड़े।

कवि साहब का ख्याल बड़ा सुंदर है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं किसी नूं बुरा नहीं कह सकता,

0: क्यों नहीं आखदा? क्योंकि परमात्मा मेरे अंदर ऐसियां चंगियाईयां ने, मेरे अंदर तो अवगुण ही भरे हुए ने। मैं अपने अंदर गुण पैदा नहीं कर सकिया, अपने आप नूं चंगा किवें कह सकना?
1: कुचल कटोर कपट कामी, कुचल कठोर कपट कामी,